0: ले जे माले शाच अलर ले
1: जे गेगिन बटन लर ले
0: नन हरि थनजन अलर ले
1: चोपो छनसो छ छेतो नाचो सी पे गाच लेंसन जो जो की ट्रिंजे जन

हाला चिंतू नु सुन दो रुता कुए होंगी तू नु सु भी संग कुए उस्ता उन्हीं सुन दो नु चिग कुए सिम दो तुझ चिग ना कुए उठी कंग